रखो सरम एकोंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पात साई दसवीं कवियो बाच बेंती चौपाई हमारी करो हाथ तेरा छा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरण नमन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट से पह तुम कावो आप हाथ दे मोह बचावो सुखी बस मोरो परिवारा सेवक सिखे सब कर तारा मोर चानज कर दे करिए सब पैरन को आज सिंगरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर पजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्यां चुबर छाऊ सु तुम ते पाऊ सेवक सिखे हमारे तरी है चुन चुन सतर हमारे मरी है आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हुजो सदा हमारे पच्छा श्रेय से दुज जू करिय हो रच्छा राखल हो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बब तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विषन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो विद राज ब्रह्मा जूतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जाचन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबध कियो कट कट के अंतर की जानत पले पुरे की पीर पछानत चिट्टी ते कुंचल असतूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उदकरख करा कर तारा प्रजा तरत तब दहे अपारा जब आ करख करत हो कबहूँ तू मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार आप आपनी बूझ उचार तुम सब ही तरहत निरालम जनत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताक मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महा मूड कछ पेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का छीनत न पिव आप आपनी बुध है जेती वर्णन पिन्न पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंक पयो राव कहीं पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतबुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फोलरा जाह मैं बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंब वाद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रचा मेरी तुम करो सिखियो बार्य सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेच करो रण खाता जस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तिवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल काओ के बार त्या है ताके काल निकट न है रचा होए ता है सब काला दुष्ट अरिष्ट ने तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो ताके ताप तनक में हर हो हृदय सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट चच व सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस देता है उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दर्द दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दैल हो उबारी सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट दोख ते लहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता खिल बिक सकल दहे को हरता दुष्ट दोख ने कोछ करता श्री अस दुज जब पाए दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बंसत फल पावे सोई दुख नत सब आपत कोई अड़ल सुने गुंग जो यहे सुरस न पावई सुने मूड़ चितलाए चतुरता आवई तूख दर्द पौ निकट न तिन्नर के रहा हो जो या की एक बार चौपाय को कह स्वयं पाएगा हे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं अनियो राम रहीम पुराण कुरान नेक है मत एक न मनियो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो श्रेयस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखानियो दोहरा सगल द्वार

मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसरना अंगीकार हो कारे तेरा कार्य सब सवरना सबना कला समरत स्वामी सुख्यो मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साच साहेबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किच है जिसते सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वजे सबद कनेरे कहे नानक सच साहेब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा धारो सच नाम धार मेरा जिन पुखा सब गवाया कर संत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाया सदा कौरबान कीता गुरु बिटहो जिस्तिया वड़े आईया कह नानक सुनहो संतो सब तरो पियारो सचा नाम राधारो वज पंच सबद तित कार सपागे सबद वाजे कल जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कारम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हो तित कर अनहत वाजे ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਨ ਵਸਤੂ ਪਾਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਕੁਰ ਕਾ ਪਾਈਓ ਜਿਸ ਕਾ